0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटा

अगर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

qual era a chicuna que a

0: नगराला काय
1: उपनगर
0: उपनगराला
1: रस्ता
0: रस्त्याला काय
1: बिल्डिंग
0: आणि बिल्डिंग मध्ये
1: गोविंदाचं
0: अरे घर लावलं का रे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
4: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा

0: हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज़ुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, NEET UG की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी सुरक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना UAE पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई

समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार मुंबई, आज 16 मई की ये खूबसूरत सी आरामदायक शनिवार की सुबह और दिल की धड़कने अपने फसाने सुनाने के लिए बेताब है। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मस्त मुंबई 107.1 FM रेनबो मुंबई पर। भीड़, ट्रैफिक, डेडलाइन सब एक तरफ और दिल की वो कहानी जो हम सब छुपा कर रखते हैं वो एक तरफ, और आज वो बाहर आ जाएंगी सारी कहानियां, क्योंकि आपकी अपनी दोस्त माला आ गई है आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। तो शुरू करते हैं दिल से निकले इस गाने के साथ और उसके बाद बढ़ाएंगे मस्त मुंबई का सफर और आगे।

जी हाँ, आप रहते हैं हमारे दिल के पास, तभी तो हम आपसे मिलने चले आते हैं 24x7 आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। और इतना चाहते हैं आप कि सुनते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से 24x7। काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम की शुरुआत से ही। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर हमारे साथ जुड़े हैं जसपुर उत्तराखंड से। वहीं वैदेही ने गुड मॉर्निंग बोला है। फिरोज सिगिनपुरिया भी जुड़ गए हैं अपने ग्रुप के साथ। अंजू अंधेरी ईस्ट से हमें सुन रही हैं। और प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे जो है सुबह का सुप्रभात हमें कह रहे हैं मस्त मुंबई के साथ। मंगेश महात्रे भी सुन रहे हैं और उन्हें कार्यक्रम का पहला नगमा बहुत पसंद आया। प्रमोद चिंचोलकर भी हमें सुन रहे हैं उमरी अकोला से और पहला गाना इन्हें भी पसंद आया। पंकज महोड़ जो हैं वो भी सुन रहे हैं। विजेंद्र घटोल ने तो हमें बताया है कि उनके खेत से जो कांदा है यानी प्याज है उसकी कटाई चालू है, उसकी फोटो, खूबसूरत सी फोटो हम तक पहुंचाई है। आप सभी का सुबह सुबह मॉर्निंग में इतने प्यार से हमारे साथ जुड़ जाने के लिए बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि और बातों का सिलसिला बढ़ाएं, ये दिल को सुकून देने वाला गाना आपके लिए ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो साथ है आपके कार्यक्रम मस्त मुंबई में। आपकी दोस्त माला।

0: और वाकई में आप जो मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं वो दिल चुरा ही लेते हैं, क्योंकि आप इतने प्यार से हम तक पहुंचते हैं। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर नंबर हम आपको भी जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन्हें बता देते हैं, 8657661071 यानी कि 8657661071। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज ऑन एयर आप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं। और मिलेश गजानन राउत, श्रेय मिलेश राउत और आर्य राउत टिघरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं किशोर नायक जो हैं उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम के गाने जो हैं उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं वासुदेवन बदलापुर से, मस्त मुंबई इंजॉय कर रहे हैं। दत्तात्रेय आदत वेलापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वैदेही कह रही हैं कि भाई पहला गाना जो दूसरा गाना जो आपने बजाया वो मेरे दिल के चैन, वो उनके लिए सरप्राइज था, खूबसूरत नगमा सुबह सुबह सुनने को उन्हें मिला। फिरोज सिगिन पुरिया भी जो है सुन रहे हैं, पंकज मोहड़ अमरावती से, और वो कह रहे हैं कि भाई आज अभिनेता विकी कौशल का जन्मदिन है तो उन्हें जन्मदिन की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभिनेता विकी कौशल को आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो की तरफ से भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और ये मैसेज हमारे पास आया है, आपने मैसेज मराठी में लिखा है माया जी, माया अग्रे। और श्रीधर मोजारकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद चिंचोलकर, बहुत ही सुकून वाले गाने आप बजा रहे हैं, उमरी अकोला से इन्होंने लिखा है। इसी तरह अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए, बने रहिए आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। वैसे कार्यक्रम है मस्त मुंबई, दिल का फसाना हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, कई बार दिल की आवाज इतनी धीमी होती है कि दुनिया हंस देती है, पर कुछ लोग वही धीमी आवाज सुनकर इतिहास रच देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिल की जिसने अंधेरे में रोशनी पैदा की, और उस दिल का नाम है निकोला टेस्ला। एक वैज्ञानिक पर असल में दिल से एक कलाकार जो बिजली नहीं ख्वाब बनाते थे, बिल्कुल इसी नगमे की तरह जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। एंजॉय कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बातें करनी है आपसे दिल का फसाना में निकोला टेस्ला के बारे में।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी

तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

और आप पहुंचे हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम के स्टूडियो में, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें 24/7 लगातार सुनते रहते हैं दिल से दिल तक। वैसे मैंने आपसे कहा कि क्या आपने कभी गौर किया है, कई बार दिल की आवाज इतनी धीमी होती है कि दुनिया हंस देती है, पर कुछ लोग वही धीमी आवाज सुनकर इतिहास रच देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे दिल की जिसने अंधेरे में रोशनी पैदा की, निकोला टेस्ला, एक वैज्ञानिक पर असल में दिल से एक कलाकार जो बिजली नहीं ख्वाब बनाते थे। कहते हैं टेस्ला बचपन में बादलों की चमक को यूं निहारते थे जैसे आसमान कोई पुरानी कविता सुना रहा हो। साथ ही वो ये सोचते कि क्या हम रोशनी को पकड़ सकते हैं। स्कूल में उन्हें अजीब कहा गया, पर उनके दिल ने कहा रुकना नहीं है, और उसी दिल के फसाने ने दुनिया को वो रोशनी दी जो आज भी रात के अंधेरे को हारने नहीं देती। एसी करंट, वायरलेस आइडियाज और तकनीक का जादू, उनके सपनों की चमक आज भी हमारे शहर की हर स्ट्रीट लाइट में जलती हुई आप देखते हैं, और उसकी रोशनी आप महसूस भी कर पाते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई, दिल का फसाना लेकर आई है आपकी दोस्त माला। आज शनिवार की इस खूबसूरत सुबह, 16 मई की ये सुबह है और बात हो रही है निकोला टेस्ला की। तो भाई कैसे वो निहारते थे बादलों की चमक में, और ऐसे उन्हें महसूस होता था कि आसमान कोई पुरानी कविता सुना रहा है। वैसे मुंबई में भी ऐसे ही कुछ दिलों में कुछ अलग करने के लिए धड़कन जगी हुई रहती है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। वो धड़कनें दुनिया को अभी नहीं सुनाई देती, पर एक दिन वो अपना दिल का फसाना जरूर लिख देंगी। कोई लोकल में 2 घंटे खड़े होकर एग्जाम की तैयारी करता है, तो कोई 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी किसी नए इन्वेंशन का स्केच बनाता है, और कोई छोटी सी दुकान चलाते हुए अपने बच्चे के सपनों में टेस्ला की तरह चमक भरता है। दिल का फसाना कभी छोटा नहीं होता, बस किसी को दिखाने का वक्त जो है वो सही होना चाहिए। और भाई आपके जो मैसेजेस हैं वो भी दिल से हमारे पास पहुंचते हैं, और वक्त हो चला है कि उन्हें भी हम शामिल कर लें। पंकज बहोड़ अमरावती से जुड़ गए हैं हमारे साथ, विजेंद्र घटोला कोला से लगातार सुन रहे हैं, और प्रमोद चिंचोलकर जो है उमरी अकोला से हमें सुन रहे हैं, अंजू अंधेरी ईस्ट से, महेश बोहरा जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर राजस्थान से, और नमस्कार प्रणाम के साथ वो लिख रहे हैं, प्रोग्राम की शुरुआत इतनी खूबसूरत होती है कि मेरा तो दिन ही बन जाता है। और अभिनेता विक्की कौशल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई उन्होंने पहुंचाई है। वहीं सुरेश सहस्त्रबुद्धे बोरीवली वेस्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणव शिंदे ने लिखा है कि अंधेरी रात में जिसने रोशनी का ख्वाब देखा था, जमाने को जगाने का अनोखा हौसला देखा था, थमाई हाथ में जिसके दुनिया ने बस खाई खोदने की कुदाल, उस टेस्ला की आंखों में हमने चमकता आसमां देखा था। वर्तमान पर हक जताने वाले तो लाखों मिल गए यहां, पर जो भविष्य को अपना बना गया वो सिर्फ निकोला थे। बेतार के तारों से जिसने बांध दिया था कायनात को, वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं कायनात का करिश्मा थे। वाकई में निकोला टेस्ला ने हमें बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी इन्वेंशन दी है, जिसकी वजह से हम रोशनी देख पा रहे हैं। आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम। अगला गाना इन्हीं उजालों को बयां करता हुआ, फिल्म प्रेम पर्वत गाया है लता जी ने। एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के।

डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुनते रहते हैं 24/7। वो कहते हैं ना कि ऐसा मन बनाओ जो कभी परवाह ना करे, ऐसा दिल बनाओ जो कभी दुखी ना होने दे, ऐसा स्पर्श बनाओ जो कभी पीड़ा ना दे, और ऐसा रिश्ता बनाओ जो कभी ना टूटे। तो ऐसा ही रिश्ता हमारा है आपके साथ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। आप हमें मैसेज भेज रहे हैं लगातार, और जो लोग हमें सुन रहे हैं और मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं उनके लिए नंबर नोट कीजिए जल्दी से, 8657661071, यानी कि 8657661071। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना निकोला टेस्ला के साथ, बनी हुई लगातार आपके आपकी दोस्त माला। वेदेही भी हमें लिख रही हैं लगातार, मधुमती फिल्म का गाना उन्हें पसंद आया, प्रदीप अनंत कृष्णन सुन रहे हैं, बाबा जुड़ गए हैं दादर से, गणेश पाटिल वाड़वन से, शुभ लक्ष्मी मस्तकार, आप कभी भी अपनी जगह का नाम नहीं बताते, उन्हें कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा है। दिलीप पानी कह रहे हैं कि भाई सपनों का शहर है मुंबई शहर, और श्रेय राउत मिलेश गजानन राउत भी हमें सुन रहे हैं। ये मैसेज है भास्कर भिसाले का करमाला डिस्ट्रिक्ट सोलापुर से, और वो कह रहे हैं कि आई लव FM रेनबो मुंबई और खास तौर पर कार्यक्रम मस्त मुंबई। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार से जुड़ते रहिए, अपना दिल दिल की बातें हम तक पहुंचाते रहिए आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर, और बातें करेंगे दिल के फसाने में और भी, पर पहले क्योंकि आप हैं हमें दिल से प्यारे, तो ये खूबसूरत नगमा बनता है कार्यक्रम मस्त मुंबई में।

बिल्कुल उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, हम बने हुए लगातार आपके साथ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी। कार्यक्रम मस्त मुंबई, वक्त हो चला है 9:43 और ठीक 53 सेकेंड हो चले हैं। और निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम कुछ बना सकते हो तो दिल की जरूर मानो और दुनिया भी एक दिन मान ही जाएगी। तो मुंबई, 16 मई की इस खूबसूरत सुबह अपने दिल को थोड़ी सी जगह दीजिए अपना फसाना कहने के लिए, और जो कहना चाहता है दिल उसे सुनिए, क्योंकि दिल का फसाना किसी दिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी भी बन सकता है। इसलिए इन फसानों को दीजिए अपनी जिंदगी में जगह और बने रहिए हमारे साथ एफएम रेनबो 107.1 एफएम पे, क्योंकि भीड़, ट्रैफिक, डेडलाइंस सब एक तरफ रह जाती है और दिल की वो कहानी जिसे हम सब छुपा कर रखते हैं वो एक तरफ। तो बस इस कहानी को आपको लेकर आना है बाहर और बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि फासले जो है जिंदगी को थोड़ा सा दुखी कर देते हैं। तो फासले नहीं, हम पास आने की कोशिश करते हैं आपके साथ इस गाने से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। खूबसूरत कल कभी नहीं आता, जब आता है तो आज ही आता है, और खूबसूरत कल की तलाश में आइए आज के इस शानदार दिन को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और बने रहें आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। अब जो वक्त है वो इजाज़त नहीं देता कि मस्त मुंबई में दिल का जो फसाना है उसे और आगे बढ़ाया जाए, तो आपकी दोस्त माला जो है वो तो बनी रहेगी आपके साथ कार्यक्रम नमस्ते भारत में ठीक 10:02 पर। उससे पहले होगा छोटा सा न्यूज़ ब्रेक, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, क्योंकि वो सेगमेंट जो है वो आपकी पसंद के गानों का सेगमेंट तो होता ही है और भारत की बातें भी हम उसमें करते हैं आपके साथ। तो बने रहिए एफएम रेनबो 107.1 FM पर। आपको छोड़ जा रही हूँ इस घंटे के आखिरी और खूबसूरत नगमे के साथ। एंजॉय कीजिए एफएम रेनबो पर।

0: 1.1 MHz musically yours।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 10:36। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बैरेंडसन ने किया। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। ब्रिटेन के प्रमुख संग्रहालयों में से एक वेलकम कलेक्शन ने दक्षिण एशिया के बाहर मौजूद जैन पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रह को लौटाने की घोषणा की है। लंदन स्थित इस संग्रहालय में एक सदी से अधिक समय से रखी गई 2000 से अधिक पांडुलिपियों की वापसी का फैसला यहां स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी के साथ संवाद और सहयोग के बाद लिया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के एक दौर के बाद इजराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिचेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। ठाणे जिले के भिवंडी से 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण के त्वरित कार्यवाही को करते हुए पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया है और घटना के महज 5 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने ये जानकारी आज दी। उन्होंने बताया कि अपहरण के मकसद का पता लगाने की जांच अभी जारी है। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर कार्यक्रम नमस्ते भारत और सुनो सुनो है दुनिया वालों लेकर हाजिर है आपकी दोस्त माला आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। और सुनो सुनो है दुनिया वालों, एक सच बताऊं, हर रोज मैं एक बात नोटिस करती हूँ, लोग चलते हैं पर ठहरते नहीं, बोलते हैं पर सुनते नहीं, और एक दूसरे को देखते हैं पर पहचानते नहीं। पर इसी भीड़ में कभी कभी कोई छोटा सा क्षण चुपचाप दिल पर दस्तक देता है, जैसे कोई अनसुनी दुआ या कोई अनदेखा हाथ जो बिना बोले कह देता है मैं हूं ना, तुम अकेले नहीं। तो आज नमस्ते भारत में हम उसी अनकही इंसानियत की बात करेंगे जो ना अखबार के पहले पन्ने पर आती है ना न्यूज चैनलों पर चलती है, पर रोज हमारे भीतर एक कोमल सा उजाला कर जाती है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे माला आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो, ये तो आप जानते ही हैं। तो भाई मैं हूं ना के इस गाने के साथ शुरुआत करते हैं नमस्ते भारत सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों।

कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, सुनो सुनो है दुनिया वालों। और रजनीकांत पाटिल वाडवन जो है वो कह रहे हैं कि आज उनकी बिटिया का बर्थडे है, तो आपने बिटिया का नाम नहीं लिखा है रजनीकांत जी, तो ज़रूर लिखिए उसको। वैसे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जैसा वो चाहती है जीवन में उसे वैसा मकाम मिले, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़े, ऐसी ही हम दुआ करते हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM से। और हमारे पास ये मैसेज आया है मिलेश गजानन राउत, आर्य राउत और का टिघरे पाड़ा से। अंजू अंधेरी इससे जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि भाई मेरे लिए तो एक

बच्चे की प्यारी सी स्माइल मुझे कह जाती है कि मैं हूँ ना। और पंकज महोड जो हैं, उन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, तो पंकज जी आपके गाने की फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम विजेंद्र घटोल ने हमें दाता फिल्म के इस खूबसूरत नगमे की फरमाइश पहुँचाई है, इसे हम पूरा करेंगे और उसके बाद आपकी फरमाइश अमर अकबर एंथनी का वो गाना हम आपके लिए ज़रूर प्ले करेंगे। तो सुनते रहिए FM रेनबो 107.9।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वैसे आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैंने एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ देखी। एक बुजुर्ग अंकल जो है रोड के किनारे खड़े थे, कार का हॉर्न सुनकर उनकी लाठी गिर गई। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थी, पर एक डिलीवरी बॉय जो है तुरंत उसने देखा और वो बाइक रोक कर उतरा और उनकी लाठी उठाई, अंकल को पकड़कर फुटपाथ तक छोड़ दिया और बोला, अंकल धीरे धीरे आप सेफ हो। बस इतना कहकर वो लड़का 2 सेकंड में गायब। जैसे काइंडनेस कोई ड्यूटी हो, दिखावा नहीं। और ऐसे मोमेंट्स जो है ना वो कैप्चर हो ही जाते हैं, भले ही वो कैमरे में कैप्चर ना हो, लेकिन आंखों में और दिल में कहीं ना कहीं अगर ऐसे मोमेंट्स दिखाई देते हैं तो ज़िंदगी में वो कैप्चर हो जाते हैं और हमें याद आते हैं। जैसे कि मैंने ये मोमेंट आज सुबह देखा। तो भाई सुनो सुनो ये दुनिया वालों, अगर आपने भी ऐसा कोई मोमेंट देखा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 8657661071 पर, 8657661 पर। और अगला गाना जो है वो हम बजाने वाले हैं।

यहाँ भी के हर शिखर पर गूंजे नाम तुम्हारा न्यारी। जन्मदिन की बच्चे को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं रजनीकांत पाटिल जी, आपकी बिटिया के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे की ओर से। और अब आपकी पसंद का गाना और साथ ही साथ फिरोज सिगिन पुरिया ने भी उमराव जान फिल्म के गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है, तो ये दो गाने बैक टू बैक ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM पर साथ बनी हुई लगातार आपकी दोस्त माला।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: शनिवार की सुबह है और हवा में हल्की सी खुशबू भी है और आराम का दिन

है तो एक मीठी सी थकान भी हम सभी में बनी होती है। ऐसे दिनों में कोई छोटी सी एक नेकी दिल को तुरंत रोशन कर देती है। जैसे बस में कोई मुस्कुराकर कह दे कि आप बैठ जाइए मेरी जगह, कोई लाइन में आपकी जगह संभाल ले बिना किसी उम्मीद के, या कोई अनजान इंसान हल्के से बोल दे थैंक यू। ऐसे छोटे पल दिन की थकान को खुशी की रोशनी में बदल देते हैं। तो सुनो सुनो ये दुनिया वालों, नमस्ते भारत चल रहा है। और आपकी ज़िंदगी में भी कभी अगर ऐसा हुआ है, क्या आपने किसी की मदद की या किसी ने आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तो शेयर कीजिए हमारे साथ इस नंबर पर 8657-6010-7 साथ बनी हुई है लगातार आपके नमस्ते भारत के माध्यम से। आपकी दोस्त माला और हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स भी जुड़े हुए हैं। तो उसमें पंकज महोड़ जो है वो कह रहे हैं कि भाई पिछले रविवार 10 मई को मैं शहर गया था, लेकिन कुछ पल के बाद मेरी तबीयत अचानक, अमरावती से शहर आए थे, तबीयत उनकी अचानक बिगड़ गई और यह देखकर एक दुकानदार ने उन्हें बेंच बैठने के लिए दिया और कुछ पल आराम करने के लिए कहा। और कुछ समय बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसे उस जगह बुलाया, तब तक उस दुकानदार ने मुझे वहाँ बैठने दिया। मेरे दोस्त के आने के बाद हम दोनों वहाँ से हॉस्पिटल चले गए। तो ये एक छोटी सी नेकी जो एक दुकानदार ने पंकज महोड़ जी के साथ की। और गणेश पाटिल भी हमें सुन रहे हैं और प्रकाश शिंदे भी सुन रहे हैं प्रणव शिंदे के साथ, और फिरोज सिगेनपुरिया, सचिन एकरे भी सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। शुभ लक्ष्मी मस्तकार, श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत, आर्य राउत भी हमें सुन रहे हैं, रजनीकांत पाटिल वाडवन से सुन रहे हैं, और विजेंद्र घटोला कोला से, अंजू अंधेरी ईस्ट से। इसी तरह अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर, क्योंकि आपका जो साथ है वो हमारे लिए बहुत बहुत कीमती और प्यारा है।

आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM फिलहाल जो है नमस्ते भारत से इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बस जाते जाते मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी, अगर दुनिया तेज दौड़ रही है तो आप वो कदम बनिए जो कहीं रुक कर किसी के लिए रास्ता आसान करते हैं। फिलहाल माला को इजाजत, जल्द होगी आपसे मुलाकात क्योंकि ममता स्टूडियो में आ चुकी है। आकाशवाणी मुंबई के अगले घंटों में 107.1 FM पर FM रेनबो पर रहेंगी वो आपके साथ, लेकिन आपकी दोस्त माला आपसे ये वादा करती है कि जल्द होगी आपसे मुलाकात FM रेनबो पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि मैं आपको छोड़ जा रही हूँ ममता के साथ और दो खूबसूरत नगमों के साथ। और ये जो गाना हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं उसका जो फील है वो ये है कि बहुत गर्मी पड़ रही है पर बारिश जो है वो आ ही

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के ठीक 11 बज चुके हैं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कल इसकी अधिसूचना जारी की। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टर्बाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर

₹16 प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से अगले 2 सप्ताह तक लागू रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मुंबई ने अपने सभी कार्यों के लिए एक केंद्रीकृत कार्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की सुगमता और व्यापार में सुगमता के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्यात प्रोत्साहन मिशन सीधे इन एकीकृत कार्यालयों से संचालित होंगे। समाचार में आगे है, थाने जिले में मुंबई वडोदरा राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल के डंपर ट्रक से टकरा जाने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आज बताया कि दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंबाड़ी क्षेत्र में काम से लौट रहे थे कि तभी उनकी बाइक निर्माण कार्य में लगे एक डंपर ट्रक से टकरा गई। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

अक्सर कई बार चीजें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन उन्हें आसान भी किया जा सकता है, बस थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी समझदारी से। फिर चाहे मोहब्बत हो या रिश्ते हो, दुश्मनी हो या फिर दोस्ती हो, हर चीज को आसान किया जा सकता है अगर आप सामने वाले का नजरिया समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि कभी कभी सामने वाला गलत हो, लेकिन अगर आप जो है भड़क जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो उस वजह से वो आप उसके नजरिए को बदल नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए कि नजरिया बदले, आपकी नजर नहीं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और ब्रेक फ्री में आज बताऊंगी आपको एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने दिव्यांगता के बावजूद UGC नेट में हासिल किए 99% मार्क्स। कौन है ये बताऊंगी आपको, बस कुछ ही देर में बने रहिए हमारे साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

क्योंकि 11:30 बजे से आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम दिल्ली से जो रिले किया जाएगा स्टम्प्ड, इसलिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है भूमिका बांधने की। तो मैं आपको ये बता दूं कि पश्चिम बंगाल के नदिया के शांतिपुर की रहने वाली पियाशा महलदार की हाइट भले ही महज 3 फीट है, लेकिन उनका जज्बा बेहद ऊंचा है। बचपन से ही वो दिव्यांग हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने UGC नेट परीक्षा 2022 में 99.31% अंक हासिल करके हर किसी को ये दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं। बचपन में उन्हें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, कई बार उन्हें निराशा का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दरअसल बचपन से ही वो एक रेयर फिजिकल कंडीशन की वजह से उनकी जो लंबाई थी वो बढ़ नहीं पाई और वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें जो परीक्षा थी UGC नेट की वो भी लेटे लेटे देनी पड़ी थी। लेकिन बचपन से ही जो इंसान लड़ना सीख जाए वो आखिर हार कैसे मान सकता है। 25 साल की उम्र में पियाशा ने न सिर्फ पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी बल्कि शानदार सफलता भी हासिल की। और ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, कैसे जिंदगी से हार नहीं मानना, कैसे जिंदगी से प्यार करना।

107.1 FM रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर का एक फ्रॉम ब्रेक फ्री, और आपको सुना रही हूं पियाशा की कहानी, जिन्हें बचपन से ही पढ़ाई का काफी शौक था। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय से लेकर कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं बहुत ही ज्यादा अच्छे अंकों से पास की, और वो जो है सितंबर के महीने में, जब वो 22 साल की उम्र की थी, 25 साल की, तो उन्होंने जो था एग्ज़ाम दिया, यूजीसी में अटेंड की हुए परीक्षा, उसके एग्ज़ाम दिए, और जब रिज़ल्ट आया तो सब लोग चौंक गए। मतलब 99.31% किसे कहते हैं, ये बाकी के जो अप्रॉक्सीमेटली 69% थे या एग्जैक्ट 0.69% थे,

कहाँ चले गए, ये सोच के सब हैरान थे कि वो मिल जाते तो 100% तो हो ही जाते। बट पियाशा, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, आपने जो कमाल कर दिखाया है और जो लोगों के लिए आप एक मिसाल बन गई हैं वो काबिले तारीफ है। क्योंकि अक्सर लोग छोटी छोटी तकलीफों से घबरा करना अपने जीवन के लक्ष्य को छोड़ देते हैं, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि दिल हार कर बैठ जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो उनकी निजी जिंदगी को लेकर हो। लड़ने का जो स्पिरिट है ना, कई बार लोगों में ख़त्म हो चुका है, कम हो चुका है, और लोग शायद लड़ना भूल गए हैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए। लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो लोगों को एक फिर से रोशनी दिखाती हैं, एक इंस्पिरेशन है आप सबके लिए, जो सबको ये बताती है कि मैं जब इतना कुछ कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। हर किसी के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हम जिंदगी में वो करके दिखाएं जो हम चाहते हैं, और अगर आप कड़ी मेहनत और लगन करेंगे, लगन से काम लेंगे, तो डेफिनेटली आप वो कर पाएंगे। पियाशा की जिंदा दिली और मंजिल हर किसी को अपने लिए भी मिल सकती है, अगर वो इस जिद पर आ जाए कि मुझे ये अपने लिए चाहिए ही। जैसे अब मुझे चाहिए एक बहुत खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, गाने के उस पार एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार थोड़ी सी बातचीत, और फिर होगा दिल्ली से प्रायोजित प्रसारित कार्यक्रम जिसका नाम है स्टम्प्ड। तो आपको हमारे साथ बने रहना है यहीं पर।

इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

उम्मीद करती हूँ कि पियाशा की जो जर्नी थी उसे देखकर, उसे सुनकर शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने उस एम्बिशन को पाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे जिसकी शायद आपने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी है। फिलहाल तो मैं आपको बस कुछ पलों के लिए छोड़कर जा रही हूँ, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन आपके लिए है कार्यक्रम स्टंप जो दिल्ली से रिले किया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि स्टंप के उस पार मेरी और आपकी फिर से होगी मुलाकात। और साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि म्यूजिक कैफे में मैं बात करने वाली हूँ कुछ गीतों के पीछे छिपी कहानियों के बारे में, जो होगा 12:02 से यही 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और आपकी फरमाइशें मैं लूंगी कार्यक्रम हिट एंड हॉट में जो होता है 1:10 से। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ यही इसी फ्रीक्वेंसी पर 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आतिफ असलम और ज्योतिका की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म लैला मजनू से ये खूबसूरत सा गाना। बड़ा ही प्यारा सा गाना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो पिक्चराइजेशन है ना, वो भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती है। वैसे ऐसे ही गानों की जो ख़ास बातें हैं, गाने कैसे बने या इस गाने के पीछे की क्या कहानी है, गाना बनने के बाद क्या हुआ, ऐसे कुछ छोटी मोटी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिन्हें मैं अगले घंटे आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो आपको मेरे साथ ही बने रहना होगा यहीं 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ साथ। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी ही देर में छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मेरी और आपकी मुलाकात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बस अब से कुछ ही देर में आने के ठीक 12 बजे होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से। समाचारों के उस पार मेरी और आपकी मुलाकात, तब तक के लिए थोड़ा सा नाच लेते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर वहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सिक्किम की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता इसे राष्ट्र के लिए सतत विकास का एक आदर्श मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा NET अब 21 जून के बजाय 28 जून को आयोजित की जाएगी। यह निर्णय परीक्षा केंद्रों पर अधिक दबाव से बचने के लिए लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA भी उसी दिन नीट परीक्षा आयोजित कर रही है। समाचारों में आगे है, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश, जो इस बात पर केंद्रित है कि प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियां, ऊर्जा कौशल, प्रकाश व्यवस्था, हरित विनिर्माण और बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से स्थिरता में

कैसे योगदान देती हैं। समाचारों के अंत में, आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिक कैफे।

वेलकम बैक, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ गीतों की कहानियां, कुछ ऐसे गीत जो हमें लगता है कि ये ओरिजिनल हैं लेकिन वो ओरिजिनल होते नहीं हैं, कुछ ऐसे गीत जिनके बनने के पीछे कुछ कहानियां होती हैं,

किसी और के लिए है, बन जाते हैं किसी और के लिए और फिर बन जाते हैं एक यादगार गीत। कुछ ऐसे ही गीतों का खजाना मैं लेकर आई हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी और थैंक्स करना चाहूंगी उन सभी लोगों का जो 11 बजे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक पाटिल जी, प्रणव शिंदे जी, पंकज मोहर जी, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, विजेंद्र घटोल जी, वैदेही जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, हाँ बहुत सारे नाम हैं, विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू, रानू सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज सिगनपुरिया जी, अंजू जी अंधेरी से, रजनीकांत पाटिल जी, महेश बुहारा जी, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमारे साथ प्यार से जुड़े रहिए, क्योंकि जब आप साथ होते हैं तो हर चीज़ का रंग बहुत ही खूबसूरत हो जाता है।

म्यूजिक कैफे में आज हम बात करने वाले हैं उस खूबसूरत गीत की जिसे लता जी की आवाज में आप सब ने सुना, सराहा, बहुत पसंद किया, बहुत प्यार किया। लेकिन दरअसल वो गीत उस वक्त का ओरिजिनल

कॉम्पोजिशन नहीं था, क्योंकि उसके पहले भी दो ऐसे साल थे जब उस गीत को अलग अलग सिंगर्स ने गाया था। कौन सा है ये गीत आपको बताऊंगी बस कुछ ही देर में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर वक्त हर पल हर लम्हा मेरे साथ रहना है, क्योंकि अगर आप मुझसे दूर गए तो हो सकता है कि आप ऐसी कुछ खास जानकारियां जो हैं वो मिस कर दें, और मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे, राइट? तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ साथ।

वेलकम बैक म्यूजिक कैफे में आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे उस गीत की जो है फिल्म पाकीज़ा से। जी हाँ, बिल्कुल सही, वही गीत इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। तो आपको ये बता दूं कि ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि 1943 में इसे सिंगर याकूब ने फिल्म आबरू में गाया था। अगर आप कहीं सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको ये गाना डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा, सुनने के लिए मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि लव्स वही है, बस जब सिंगर बदल जाते हैं तो किस तरह से गीत बदल जाता है ना, कमाल की बात है। और यही नहीं, उससे भी पहले ये जो गाना है शमशाद बेगम ने

41 की फिल्म हिम्मत में गाया था और उसके बाद जो है पाकीज़ा फिल्म में लता जी की सोलफुल आवाज़ में इसे एक अलग ही रूप रंग दे दिया था। बेहद खूबसूरत सा गीत है। एक ज़माना था जब इस गीत को बहुत गाया जाता था महफिलों में और इस गीत के ज़रिए जो औरतें होती थी वो अपना दुख दर्द बयां करती थी और काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था ये गाना। और ऐसा कहा जाता है कि किसी गुमनाम शायर ने इस गीत को लिखा था और औरतों की तकलीफ़ को इस गीत के थ्रू उन्होंने बयां करने की कोशिश की। गीत बेहद खूबसूरत है, आपके दिल को छू लेने वाला है और जब लता जी की आवाज़ उसमें आ जाती है या शमशाद बेगम जैसे सिंगर्स की या फिर याकूब साहब जैसे लोगों की आवाज़ उसमें आ जाती है तो वो गीत हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। तो आइए आपको सुनवाते हैं पाकीज़ा फिल्म का वही गीत जो अलग अलग रूप में हमारे सामने बहुत बार आ चुका है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

है जिसको जब कोई सुनता है, स्पेशली जिसका हार्ट ब्रेक हुआ हो, वो डेफिनेटली रो पड़ता है। उसके दिल को वो गाना अंदर तक छू जाता है। जब ये गाना संजय लीला भंसाली जी ने सुना तो उन्होंने कहा, मेरी फिल्म का मुझे मकसद मिल गया। और इस गीत को सुनने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया। क्या आप जानते हैं ये गाना कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि हम किस गीत की बात कर रहे हैं? बताइए अगर जानते हैं तो। अगर नहीं जानते तो इस गीत के उस पार उसी गीत की कहानी। बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ।

भाई क्या बात है, इसका एक बहुत ही इस गीत का सैड वर्जन भी है, लेकिन मैंने सोचा कि एक ऑलरेडी सैड वर्जन मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो यकीनन आपके दिल को छू जाएगा, तो इसका थोड़ा सा हैप्पी वर्जन प्ले करते हैं। वेलकम बैक 107.1 FM रेन, वो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूँ ममता सहगल आपके साथ। पंकज मौहर जी, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, हम इसी गीत की बात कर रहे हैं। तो भाई किस्सा कुछ यूं है कि ये गीत जब केके की आवाज़ में संजय लीला भंसाली जी ने सुना, तो जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फिल्म का मकसद मिल गया और उन्होंने अपना क्लाइमैक्स इसी गीत को सुनकर शूट किया। लेकिन इसके पहले की कहानी कुछ ये है कि इस गीत को दरअसल इस्माइल दरबार जी ने कंपोज किया था एक दूसरी बिग बजट फिल्म के लिए। अब फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स थे वो चाहते थे कि इस गीत को कव्वालों की आवाज में गाया जाए, लेकिन जब इस गीत को बहुत तरीकों से रिकॉर्ड किया गया, वो एक सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन इस्माइल जी को नहीं मिल रहा था जो वो चाहते थे कि उन्हें इस गीत से मिले, तो उन्होंने जो है ये गीत केके की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस बात से फिल्म के प्रोड्यूसर्स जो थे वो काफी नाराज हो गए और उन्होंने इस गीत को अपनी फिल्म में शामिल नहीं किया। इस बात से इस्माइल जी का दिल डेफिनेटली टूट गया होगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब कोई हम काम करते हैं और वो जो है वेस्ट हो जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। अब आइए आते हैं इस फिल्म पर। तो ये जो फिल्म है, इस फिल्म के लिए जब उन्होंने बहुत सारे गाने जो है सुनाए संजय लीला भंसाली जी को इस्माइल दरबार ने, तो कुछ बात नहीं बन रही थी। एंड देन फाइनली जब उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया इस्माइल जी ने, तो उन्होंने कहा चलिए एक ये गाना जो है ये भी आप सुन लीजिए। और जब ये गीत सुनाया तो आपको मैं रिएक्शन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बस इसको सुनने के बाद ना केवल ये एक गीत बल्कि फिल्म के कई अन्य गाने भी इस्माइल जी ने कंपोज किए। फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम और गाना अब तो आप पहचान ही गए होंगे, करेक्ट?

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

और हमें भी यहाँ पर आपका इंतजार रहता है ऐसे ही कि कब हमारी और आपकी मुलाकात हो, और ये मुलाकातें यूं ही चलती जाएं। उम्मीद करती हूँ म्यूजिक कैफे में आज जिन दो गीतों की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वो गीत पसंद आए हैं, उनकी जानकारी पसंद आई है, तो आप जो है ये सारी बातें हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपने दिल के हर जज्बात आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी उस एक कोशिश से आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाए। 107.1 FM रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और म्यूजिक कैफे का ये आखिरी गीत आपको पेश किए जा रही हूं। ठीक 1 बजे होंगे मराठी में समाचार, समाचारों के उस पार हिट एंड हॉट में आप अपनी फरमाइशें मुझे भेज सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जिन गीतों की आप रिक्वेस्ट करें वो गीत बहुत लंबे ना हो, क्योंकि जितने लंबे गीत होंगे उतनी ही कम फरमाइशें मैं ले पाऊंगी। अगर गीत छोटे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की फरमाइशें मैं ले पाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के पिटारे में क्या क्या है। फिलहाल इस घंटे का ये आखिरी गीत, समाचारों के उस पार मेरी और आपकी मुलाकात।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हिट एंड हॉट में आप सभी का स्वागत है। अब क्योंकि ये जो घंटा है फरमाइशों का घंटा है, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले दो फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं। मेहर ममता कीर्ति भूमिका, इन शॉर्ट अरोरा फैमिली की राजस्थान से जुर्माना फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं, और दूसरी फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं दिग्दर्शन और कविता की सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं। तो चलिए बैक टू बैक ये दोनों गाने प्ले करते हैं, फिर आगे की फरमाइशें ली जाएंगी।

बहुत खूबसूरत गीत। और अगले जो दो गीत हैं वो है प्रदीप अनंत कृष्णन की फरमाइश पर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, और उसी के साथ में पंकज मोहर जी की फरमाइश पर चांदनी फिल्म का ये गीत।

क्या बात है, बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। कुछ कुछ गीत जो हैं वो 9-9 मिनट लंबे हैं, तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि 9 मिनट लंबे गीतों की जगह अगर आप जो है थोड़े छोटे गीतों का चयन करें तो मैं ज़्यादा लोगों की फरमाइशों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर पाऊँगी। अभी जो अगली फरमाइश है वो है गीत क्या हुआ तेरा वादा, और साथ ही साथ जन्नत फिल्म के गाने की फरमाइश की है हाँ तू है प्रणव शिंदे जी ने। क्या हुआ तेरा वादा जिसने फरमाइश की थी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में उनका नाम बताती हूँ, मैं उनका नाम लिखना भूल गई, तो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली फरमाइशें इतनी सारी आ रही हैं मेरे पास कि मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन किस गीत की फरमाइश कर रहा है। तो चलिए पहले आपको ये गीत सुना देती हूँ, फिर बताती हूँ क्या हुआ तेरा वादा किसकी फरमाइश थी, और जन्नत फिल्म का ये गीत प्रणव शिंदे जी की फरमाइश पर।

इसी के साथ आपको बता दूं कि ठीक 1:30 पर होंगे समाचार मराठी में। समाचारों के उस पार आपकी फरमाइशों का ये जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा।

और इस गीत की फरमाइश हमसे की थी राकेश माथुर जी ने। और इसके पहले जब हमने क्या हुआ तेरा वादा ये गाना प्ले किया था तो वो फरमाइश थी विट्ठल देशपांडे जी की। अब अगले दो गीत जो आप सुनने वाले हैं उनमें से एक है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, और इस गीत की फरमाइश की है दिलेश वंजारी जी ने। और लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, चांदनी फिल्म से इस गीत की फरमाइश की है पंकज मोहर जी ने। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट और मैं कोशिश कर रही हूं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा फरमाइशें इस कार्यक्रम में ले सकूं, बाकी तो फिर वक्त के ऊपर सब डिपेंड करता है।

और इस खूबसूरत गीत के बाद जो अगला गीत है उसकी फरमाइश की है दीपाली जी ने अमरावती से, और इन्होंने कहा है कि आज वट व्रत अमावस्या है, तो इसलिए इन्हें एक तो सबको शुभकामनाएं देनी है और दूसरा इन्हें गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का एक गीत सुनना है। अब जिस गीत की फरमाइश आपने की है वो नहीं है, लेकिन उसी फिल्म का एक और बेहद खूबसूरत सा गीत जो अब क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत होता है वो पतिदेव के लिए होता है, तो बस कुछ उसी इमोशंस को बयां करता हुआ ये गीत मैं प्ले कर रही हूँ। और मुझे बहुत डाउट लग रहा है कि मैं कोई और बड़ा गाना या कुछ ऐसे किसी की फरमाइश ले पाऊंगी। चलिए देखते हैं इस गीत के बाद मैं एक और फरमाइश किसकी ले पाऊंगी। ठीक 2 बजे से होंगे दिल्ली से समाचार, बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। ...2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर

0: और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
6: If you heard me earlier,
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के

0: खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकारी योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री K.P. ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है।

कृषि कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी कार्यक्रम लव यू जिंदगी में स्वागत करती हूँ मैं आरजे अनीता। अब शाम तो होने को आई है, तो चलिए आप भी मेरे साथ।

जी हाँ, शाम तो होने लगी है तो आप तैयार है ना, साथ है ना, तो चलिए निकल पड़ते हैं लव यू जिंदगी के इस सफर पर, जहां पर हम आपको रूबरू कराते हैं जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी नाम है उन छोटी बड़ी खुशियों का, उन शिकवों का। तो जिंदगी को जिंदगी यही तो बनाती है, और इसी कोशिश के तहत मैं लेके आई हूं एक छोटी सी कहानी आपके लिए कुछ प्यारे से गीतों के साथ, तो उन्हीं को पिरोकर। और ये वैसे काल्पनिक कहानी है और उम्मीद करती हूं आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए, जब शाम गहरा रहा है तो हम भी उसी की बात करते हैं। मेधा हर शाम अपने अकेलेपन और बोरियत को कम करने चाय का प्याला उठाकर पार्क में जाकर बैठती। खिले हुए फूलों और हंसते खेलते बच्चों को देख उसका जो अकेलापन है कुछ हद तक कम हो जाता और दिल बहल जाता। करीब 1 साल से यही तो सिलसिला चला आ रहा था। मेधा को लगता कि उसका जीवन

बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दूसरे शहर में रहने लगे थे। पति अपने ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त रहते थे और काम के सिलसिले में अक्सर उन्हें टूर पर जाना पड़ता था। वैसे मेधा को लिखने का शौक तो था, पर अब मानो लिखने की इच्छा ही नहीं होती थी। उदासी और उदासीनता बस इनका ही साथ रह गया था। अब

जी हाँ, ये आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 107.1 और मैं हूँ आज आपके साथ आरजे अनीता। कार्यक्रम लव यू जिंदगी, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटी सी कहानी कुछ गीतों के साथ। वैसे आपने गौर किया होगा कि कुछ उदासी भरे गीत थे, लेकिन बस इंतज़ार करिए, धीरे धीरे जैसे जैसे शाम बीतती जाएगी वैसे वैसे रंगत बदलेगी। और आपको अगर कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रतिक्रिया देनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, यानी 8657661071। बहरहाल हो चला है वक्त एक छोटे से अंतराल का, और उसके बाद मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगी। यही कार्यक्रम होगा, यानी लव यू जिंदगी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये कौन आया होगा, और आपने कल्पना बहुत सारी की होगी अलग अलग, लेकिन बता दूं कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा शायद कुछ है नहीं, क्योंकि पार्क में उस दिन एक वृद्ध महिला दिखी। एक दिन की बात है कि पार्क में वो बैठी थी हर शाम की तरह ही, और एक वृद्ध महिला दिखी। इन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी उम्र कुछ 70 साल की होगी, मेधा ने देखकर अंदाजा लगाया। मेधा कभी बातचीत की शुरुआत नहीं करती थी, सो 2 शामें तो बस इसी तरह गुजर गई। तीसरी शाम जब वह प्याला हाथ में लिए पार्क के बेंच पर बैठने ही जा रही थी, तब पीछे से एक आवाज आई, क्या मुझे चाय नहीं पिलाओगी? यह सवाल सुनकर वह चौंक सी गई। देखा तो वही वृद्धा थी जिसने बड़े प्यार और अधिकार से चाय की फरमाइश की थी।

पीछे से जब उस वृद्धा ने कहा कि मुझे चाय नहीं पिलाओगी, तो मेधा थोड़ी सी सकपका गई। फिर झेपते हुए मेधा ने कहा, क्यों नहीं, चलिए मेरे घर, बस 5 मिनट में बना देती हूँ। मेधा को लगा था कि वे घर आने से इनकार कर देंगी, पर वे बड़ी बेतकल्लुफी से मान गई। चाय पीते पीते धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगी। उनका नाम सुमेधा था। क्या इत्तेफाक की बात थी। सुमेधा सोचती रही और कि ये तो मेरे ही नाम से मिलता जुलता नाम है, और मेधा ने भी कुछ यही सोचा। सुमेधा जी हाल ही में इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने आई थी और अपने पोते के साथ, यानी उनका नाम हरी, अपने पोते हरी के साथ। सुमेधा जी के पति को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। पति के गुजरने के तुरंत बाद उनके बेटे और बहू को विलायत में अच्छी नौकरी मिल गई थी। वे हमेशा के लिए वही बसने चले गए थे। हरी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वह दादी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तो आगे क्या होता है ये जरूर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जिंदगी की इस पहेली को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करते, हालांकि कोई सुलझा तो नहीं पाया।

सुमेधा जी के बारे में जानकर मेधा को लगने लगा कि इतने दुख देखने के बाद भी ये औरत कितनी जिंदा दिल थी। सगे बेटे ने उनके बारे में नहीं सोचा, पति का स्वर्गवास भी हो गया था और फिर भी माथे पर शिकन नहीं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अरे भी काम समेटकर शाम को बड़ी देर से ही तो घर लौटता था। अकेली तो सुमेधा जी भी थी। वे जीवन के संघर्षों से जूझ रही थी, लेकिन माथे पर कोई शिकन नहीं, न जाने किस मिट्टी की बनी थी। सुमेधा जी से मेल जोल बढ़ने लगा। हरी से जब मेधा मिली तो उसे बहुत खुशी हुई यह देखकर कि वो कितना जिम्मेदार और खुश मिजाज युवक है, जिसने माँ बाप के साथ विदेश जाने के बजाय दादी के अकेलेपन को बांटना अधिक आवश्यक समझा। और तब धीरे धीरे मानो मेधा समझने लगी कि शायद जीवन का यही रंग रूप है।

कार्यक्रम लव यू जिंदगी लेके आई हूं मैं आज अनीता, और अब बस कुछ ही पल बचे हुए हैं इस सेगमेंट के, तो चलिए कहानी का जो अंत है उसकी ओर बढ़े। सुमेधा जी की जिंदा दिली और सकारात्मक सोच का मेधा पर भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगा। जीवन के प्रति उदासीनता का भाव अब कम होने लगा। उसने दोबारा लिखना आरंभ किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में लाख कमियां हों, जिंदगी से लाख शिकायतें हों, पर जिंदगी फिर भी प्यारी ही होती है। सुमेधा जी के सरल पर प्रभावशाली व्यक्तित्व ने वास्तव में जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल दिया था। तो यही है छोटी सी कहानी, और आप सोचिए इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। जब मैं लिखती चली गई तो समझ नहीं आया कि इसका नाम क्या दूं, तो आप ही सुझाइए कि नाम क्या होना चाहिए। बहरहाल आखिरी गीत अब बजेगा। उम्मीद करती हूँ लव यू जिंदगी का ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा, और जो गीत आपने सुने कहानी के साथ साथ वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। मेरी कोशिश थी कि कुछ नायाब और कुछ सुरीले गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। बहरहाल अगर आपको कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रतिक्रिया देनी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8657661071, यानी 8657661071 पर। साथ ही अगर आप हमें स्टूडियो में फोन करना चाहे तो हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 022 STD कोड अगर आप मुंबई के बाहर से फोन कर रहे हो, यानी 022, और नंबर इस प्रकार है 4515 4132, यानी 4515 4132 और 4515 4133, यानी 4515 4133। तो लीजिए आखिरी नगमा ये पेश। 6:05 पर आप सुनेंगे समाचार, और 6:15 फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी। कार्यक्रम होगा अंदाजे बयां, जहां पर जैसा कि नाम ही है, जो बयां करने का अंदाज होगा वो बिल्कुल अलग होगा, और जो गाने बजेंगे, गीत बजेंगे, जो संगीत होगा वो भी एक अलग रंग लिए हुए। तो फिलहाल छोड़े जाती हूँ आपको इस गजल के साथ जो निदा फाजली ने लिखी है, और बेहद खूबसूरत बोल शायद हर किसी के लिए लागू।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 पर मैं स्वागत करती हूं आप सभी का। मैं यानी आरजे अनीता, जी हां, कार्यक्रम लेके आई हूं अंदाजे बयां, यानी अल्फाज वही लेकिन बयां करने का अंदाज कुछ अलग, कुछ अनूठा। तो लीजिए शुरुआत करते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में इस खूबसूरत से गजल से, जो शायद आपने सुनी हो या नहीं, लेकिन अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि बार बार इसे सुनेंगे।

तो कहिए कैसा लगा ये अंदाज़े बयां सुमन कल्याणपुर का, कितना सुकून मिला ना सुनकर इस आवाज़ को। बहरहाल बात करते हैं कवियों की और गीतकारों की। जी हाँ, कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और कुछ ऐसी ही बात कहता हुआ ये गीत फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का। आगे बात करेंगे कवियों और गीतकारों की, लेकिन सुन लेते हैं ये गीत जहां पर कवि और रवि और उसके परे की भी बात है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाजे बयां। आज मैं हूं आपके साथ आरजे अनीता, और कुछ बेहतरीन गजलें और बातें हो रही हैं कवियों और गीतकारों की और उनके कल्पना की उड़ान की। लेकिन वक्त हो चला है एक अंतराल का, क्योंकि एक संदेश का वक्त है। तो लीजिए सुनिए ये संदेश, और मैं हाजिर होती हूँ बस थोड़ी ही देर में।

उनका, और शायद इसीलिए वो इतनी बेबाकी से अपनी तारीफ कर लेते हैं कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और सुखनवर यानी शायर यानी खुद ही की तारीफ का एक बेहतरीन उदाहरण है ये शेर गालिब का, जहाँ कि वो मानता है कि दुनिया में और भी अच्छे कवि हैं, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि उसकी शैली या अंदाजे बयां बाकियों से बिल्कुल हटकर है, जो उसे सबसे खास बनाता है। बहरहाल चलते हैं एक और आवाज की ओर, जहां पर कुछ शिकायत सी है कि जी भर के देखा तक नहीं, अब देखो क्या हो गया है। तो चलिए सुनते हैं न जी भर के देखा।

जी हाँ, ये अल्फाज थे बशीर बद्र साहब के। तो कभी कभी सरल शब्दों में कितनी गहरी और अर्थपूर्ण बात कह जाते हैं ना ये शायर। वाकई में शब्दों के जादूगर होते हैं। और अगली जो रचना है उसमें भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ये शायर ऐसे हैं जो कभी दिल को पड़ोसी बना लेते हैं तो कभी चांद परोसते हैं। जी हाँ, आप इशारा शायद समझ ही गए होंगे, है ना?

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

यह कार्यक्रम अंदाजे बयां चल रहा है। मैं हूं आज आपके साथ आरजे अनीता, और जैसे कि आप जानते हैं इस सेगमेंट पे हम कुछ हट के गीत सुनवाते हैं, कुछ गजलें, कुछ फोक, कुछ कव्वाली, तो उस तरह के गीत। और आज मेरी कोशिश रही है कि अलग अलग आवाज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, और साथ ही कुछ बातें कवियों और गीतकारों की भी चल रही है। और मैं देख रही हूं धीरे धीरे आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, हम तुम जो रिक्वेस्ट आर होता है बस उसके लिए, और मैं भी नज़र रख रही हूं उन पर और कोशिश करूंगी उनको शामिल करने की। बहरहाल यही कहेंगे कि चाहे ज़िंदगी के तजुर्बों की बात कहनी हो, या पहले प्यार के मीठे दर्द को बयां करना हो, या फिर किसी अपने से खाए धोखे की बात हो, हर मौके पर कुछ सटीक और दिल को छू लेने वाली बात शायर कह जाते हैं। जैसे हसन कमाल कहते हैं, जिंदगी क्या कोई निसार करे, किससे दुनिया में कोई प्यार करे। जिंदगी क्या कोई निसार करे, किससे दुनिया में कोई प्यार करे, अपना साया भी अपना दुश्मन है, कौन अब किसका एतबार करे।

जी हाँ, आप पहुंचे हैं अंतिम पड़ाव पर। घड़ी का इशारा है कि बस चंद मिनट बचे हुए हैं, तो आखिरी जो आवाज गूंजेगी वो होगी जगजीत सिंह की। और ये बड़ा ही खूबसूरत है ये गीत।

और आप सुनिएगा और लुत्फ उठाइएगा इसका। और देखिए, 7 से 7:30 तक होंगे समाचार, प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगी हम तुम लेकर, जहां पर होंगे आप ही के पसंद के गीत। और तैयार रखिएगा अपनी फरमाइशें, और मैं देख रही हूँ कई सारी फरमाइशें आ भी चुकी हैं, तो बस छोड़े जाती हूँ इस गीत के साथ, और मिलूंगी फिर 7:10।

वादे के मुताबिक हाजिर हूँ मैं आज अनीता। कार्यक्रम हम तुम में जहाँ पर शामिल होते हैं आप ही के पसंद के गीत। और लीजिए आज शुरुआत करेंगे पंकज मोहर जी की पसंद से। ये अमरावती से फरमाइश कर रहे हैं, फिल्म अरमान के इस गीत का उन्होंने चयन किया है। तो लीजिए पंकज जी आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम हम तुम में जो अगली पसंद है वो है प्रमोद चिंचोलकर जी की, जो उमरी अकोला से सुनना चाह रहे हैं। फिल्म अमृत का ये गीत, जिसमें कि कभी ना खत्म होने वाले प्यार की बात है, यानी हमेशा साथ रहने की। तो चलिए सुनते हैं आपके साथ हम भी ये खूबसूरत सा गीत।

अगली जो पसंद है वो हमारे एक ऐसे श्रोता की पसंद है जो पल पल की खबर रखते हैं, यानी ये कि कौन सी फिल्म किस दिन को रिलीज हुई, इसका पूरा लेखा जोखा उनके पास रहता है और वो हमें बाकायदा भेजते भी हैं और उसी तरह से उनकी फरमाइशें भी होती हैं। तो आप सब जो नियमित श्रोता है वो समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ प्रकाश शिंदे जी की मान खुद से, जो फरमाइश कर रहे हैं फिल्म जमीर के इस गीत की तेरे नगमे। और कहते हैं कि आज ही के दिन 1997 में यानी 16 मई को ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत और इस ऐतिहासिक पल को फिर से जीते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अगली जो पसंद है वो है राकेश माथुर जी की, जो पुणे में रहते हैं और वो सुनना चाहते हैं फिल्म धनवान का ये गीत। तो लीजिए सुनिए राकेश जी, और हम भी आपके साथ मजा लेंगे इस गीत का।

अगली पसंद है श्रीधरन जी की, जो सुनना चाहते हैं फिल्म खेल खेल में का ये गीत। और आपने शायद गौर किया होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ सभी की फरमाइशों को सुनवाने की, तो मुमकिन है कि गाना अगर बहुत लंबा है तो पूरा न बज पाएगा, तो बस माफ कर दीजिएगा। बहरहाल सुनते हैं श्रीधरन जी की पसंद का ये गीत।

0: अगली पसंद है संजय जी की, जिन्होंने हमें फोन किया मलाड़ से और वो सुनना चाह रहे फिल्म धर्मात्मा का ये गीत। तो लीजिए सुनिए संजय जी आपकी पसंद का ये गीत।
1: रेशमा

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अगली पसंद है प्रदीप अनंत कृष्णन जी की, और ये भी सुनना चाह रहे किशोर कुमार की आवाज में ये प्यारा सा गीत। फिल्म खैर आप शायद पहचान ही जाएंगे क्योंकि टाइटल सॉन्ग है।

जी वो कहते हैं ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, जहाँ कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि प्रदीप जी सुनना चाह रहे थे बड़े दिल वाले फिल्म का गीत, लेकिन बज उठा कोई और ही गीत, मुनीम जी वाला, लेकिन है सदाबहार, तो प्रदीप जी इसका मजा लीजिए हमारे साथ, और माफ करिएगा लेकिन गीत बड़ा प्यारा है।

अगली जो फरमाइश है वो सिरो फिरोज सिगनपुरिया जी की है, जो हमारे नियमित श्रोता हैं और वो डेडिकेट कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप को, जो कि है वर्ल्ड म्यूजिक लवर्स ग्रुप। और ये बड़ा खूबसूरत गीत, जहाँ पर मानो रफ़ी साहब यानी नायक के लिए कहते हैं कि बहारों को और न जाने किस किस को आदेश देते हैं कि क्या करना है, क्योंकि उनकी महबूबा आ रही हैं, तो मानो सब उनकी बात मान ले। तो आप पहचान गए होंगे फिल्म सूरज का ये गीत।

कार्यक्रम हम तुम का अब आखिरी गीत बजने वाला है और हमारे कई सारे श्रोता हैं जिनके आज फरमाइशें तो आई और जिन्होंने शिरकत की लेकिन उनके गीत बज न सके, तो माफ़ करिएगा लेकिन मैं उन सभी के नाम ज़रूर पढ़े देती हूँ। अंजू जी अंधेरी से, हीरामणि वर्मा जी साथ ही हैं, ज्योति घाटोल जी अकोला से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी और हरजिंदर छिंदा जी दिग्दर्शन और कविता जी, अजय साखरे जी इंदौर से, राम प्रजापति जी, तो कई सारे ऐसे लोग जो जुड़े हैं लेकिन वक्त की जो किल्लत है उसके कारण उनके गीत बज नहीं पाए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और ये जो आखिरी गीत है वो है अरविंद कुलकर्णी जी की पसंद का, जो इच्छलकरण जी कोल्हापुर के पास जो है इच्छलकरण जी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ का कपड़ा बहुत मशहूर है हाथ का जो बनता है। तो अरविंद जी आपकी पसंद का ये गीत फिल्म साहेब से, यार बिना चैन कहाँ रे, तो ये आखिरी गीत, इसके साथ मैं आपको छोड़े जाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये 3 घंटों का सफ़र अच्छा लगा होगा जैसे कि मुझे मज़ा आया आपके साथ जुड़कर और प्यारे प्यारे गीतों को सुनकर और सुनवाकर आपको भी। तो आपका वीकेंड खुशगवार गुजरे इसी कामना के साथ मैं आरजे अनीता विदा लेती हूँ। नमस्कार, फिर ज़रूर कभी मुलाकात होगी।

0: You know, it's amazing. I've already got 30 people who messaged in saying the biggest artist or group from Europe is Michael Jackson. Folks, Michael Jackson is from America. He's not from Europe, even though he was one of the biggest superstars in Europe. Tonight, we'll be counting down the 100 biggest artists and groups from Europe. 44 countries make up Europe. And I'm talking about Ireland, UK, France, Spain. All of these superstar countries have given us the biggest pop names ever. Who do you think is number one on the list? Message me in a bit. Stick around right now. You're listening to Akashwani's Rainbow Channel on FM 107.1 MHz, the number one station in Amchi, Mumbai. Coming up right now is the news in Hindi at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. And at 9:15, we'll be back counting down the biggest artists and groups from Europe. What a list. Boyzone, U2, Ron Keating. Not giving it away. Stick around. Keep listening in to this station.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ईमानदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतु गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों

रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुरों की महफिल रंगे महफिल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आज विनीता बेदी। और दोस्तों, रात जब अपने आंचल में थोड़ी खामोशी, थोड़ी तन्हाई और थोड़ी सी नमी समेट लेती है ना, तब कहीं जाकर जन्म लेती है गजल। गजल जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जो अल्फाज से कम और खामोशियों से ज्यादा बात करती है। आज की इस महफिल में हम उन नगमों को समझाएंगे जो कभी इश्क की तरह रूह में उतरे, कभी जुदाई की तरह देर तक ठहरे रहे। तो आइए महफिल का पहला चिराग रोशन करते हैं। सूफियाना रंग में डूबी इश्क को इबादत बना देने वाली बहुत ही खूबसूरत पेशकश पूरन चंद वडाली साहब की आवाज में, खास तौर पर आप।

दोस्तों रंग महफिल में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ। पता है कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सुबह की पहली रोशनी जैसी लगती हैं, धीरे धीरे दिल पर उतरती हुई, और कुछ एहसास ऐसे जो दिन रात हमारे भीतर चलते रहते हैं बिना किसी दस्तक के। अब सुनिए हरिहरन की ऐसी ही आवाज़ में एक नर्म और रेशमी गज़ल, मुझे बहुत पसंद है।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: दोस्तों आकाशवाणी दिल्ली पर आप हैं, विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल। तन्हाई जब बहुत देर तक साथ रहती है ना, तो दीवारें भी सुनने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, तन्हाई जब बहुत देर तक साथ रहती है तो दीवारें भी सुनने लगती हैं, उनसे बातें होने लगती हैं और फिर इंसान अपने ही घर में अपने ही यादों का मुसाफिर बन जाता है। इसी एहसास को अल्फाज देते हैं पंकज उदास।

दोस्तों, रंग महफिल की महफिल में आज आप हैं मेरे साथ। मैं हूं विनीता बेदी। और कहते हैं कि इश्क सिर्फ मिलना नहीं होता, इश्क कभी सिर्फ मिलन नहीं होता, कभी वो एक लंबा इंतजार भी होता है। एक ऐसा सफर जहां दिल थकता तो है मगर रुकता नहीं, क्योंकि रुक गया तो शायद रास्ता ही भूल जाएगा। और लीजिए, इसी बात पर पेश है एक बेहद उम्दा गजल आशा भोंसले की आवाज में, जिसके हर शेर में रिश्तों की तपिश और जुदाई की धूप है।

0: दोस्तों, सच्चाई ये है कि इश्क को समझना शायद आसान नहीं। कभी वो रोशनी बनकर राह दिखाता है तो कभी धुएं की तरह आंखों में उतर आता है, और तब दिल बस यही पूछता है कि आखिर एक इश्क है क्या और क्यों? क्या वाकई सिर्फ किसी से कुछ कह देना भर इश्क है?
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंग महफिल में। दोस्तों, मोहब्बत में दीवानगी अगर ना हो तो शायद वो मोहब्बत अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं कि उनसे बिछड़ कर भी इंसान कभी भी उनसे अलग नहीं हो पाता, है ना। जगजीत सिंह की आवाज में जब कोई भी गजल कानों में उतरती है तो लगता है कि मोहब्बत और उसकी दीवानगी शायद सामने शक्ल पा गए हैं। और इस गजल के साथ ही इश्क, तन्हाई, याद और रूह की इन सरगोशियों के साथ आज की रंगे महफिल यहीं सिमटती है। उम्मीद है इन गजलों की खुशबू काफी देर तक आपके एहसासों में बसी रहेगी। मैं हूं विनीता बेदी, अब आपसे इजाजत चाहती हूं। नमस्कार, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति ने अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन

यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने 93 रन की सर्वाधिक पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखिए ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए।

जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए श्रोताओं, चलिए अब आपको ले चलते हैं हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर, सुहानी रात में।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।

0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
1: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। इस संबंध की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी से जुड़ी है। अब यह साझेदारी सांस्कृतिक आधार से आगे बढ़कर मजबूत औद्योगिक और आर्थिक सहयोग में बदल रही है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कल डोमिनिका की विदेश मंत्री के साथ फार्माकोपिया और त्वरित प्रभाव परियोजना QIP पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। श्री मार्गेरिटा ने डोमिनिका के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्री विंस एंडरसन से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल FTA पर लगने वाले VAT को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के विजन के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रियायती VAT दर फिलहाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और दिल्ली के हित में लिया गया यह फैसला सरकार के लिए लगभग 985 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को January 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए बहुक्षेत्रीय तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई मेंढर तहसील के मनकोट क्षेत्र में 12 मई को ही उस घुसपैठ की कोशिश के बाद शुरू की गई है, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: लगाकर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया

0: तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और हरित परिवर्तन, AI प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में जिलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर दिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनील नारायण ने 2 ओवर में 29 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज से स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जा रही है। यह दौरा प्रधानमंत्री की व्यापक यूरोप यात्रा का 3रा चरण है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष जनवरी में लागू होने के बाद यूरोप की उनकी ये पहली यात्रा भी है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से

0: कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान कल पहले दिन विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में झीलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के 70 नव निर्वाचित पार्षदों से भी मुलाकात की। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्रवाई के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय खंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। कोलंबिया में एक पूर्व मेयर रोजर्स देविया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ उनके एक सहयोगी एडर कॉर्डोना की भी मौत हो गई। देविया पहले क्यूबराल शहर के मेयर रह चुके थे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अबेलार्डो डी ला एस्प्रेला के समर्थक थे। इस घटना को राजनीतिक हिंसा माना जा रहा है। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। वहीं कल हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को

0: लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और

0: शुरू हुई है। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात,